के बैसा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्योरा कहीं पूपा अंड जय रसे तजके ने खान बहोर रच दीनी कहो बूरा जा हम बैठा कहो सिर प्यो शंकर कैठा सगरी से दिखाए चंभव आद जगा शुरू से अंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख अवारे सिख संगरो दो जित उठ पाता सकल मलेश करो रण गाता जया तू सरणी परे तिनके दुष्ट दूत है मरे पुरख जमन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निट नहीं आए हैं रचा होए ताए सब काला दो टरी टरे तदकाला कृपा दे तन जाए न हर हो ताके ताप तर्क में हर हो रेद सिद कर्म सब होई दो ऐसा सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल वांते ताए उबारा जिन्ना नाम त्यारो कहा दारद दुष्ट दो तेरा खड़ग के तमें शरण त्यारी आप हादे लियो अबारी सर्व ढोर मोहो सहाई दुष्ट दो ते लियो बचाई सवैया पाएंगे जब ते तुम रे तब ते को तरे नहीं आने राम री पुराण कुरान ने कहे मत एक न माने सिमरत शास्त्र बे सब है बहुपेद गम एक न जाने श्री अस्पान कृपा तुमरी कर नैन कहो सब तोय बखाने दोहरा सगल द्वार को शा डेके गेहो द्वारो द्वार बह गए की लाज अस गोविंदास तुहार राम कली महला तीजा आनंद क्यों अंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईया शब्दो तंगा बोहरी केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारना सब न गला समरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब किछ है जे दे सो पावे सदा सिसला तेरी ना मन वसावे नाम जिनके मन वसे आ वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कार तेरे साचा नाम मेरा आधारो साज नाम आधार मेरा जिन पुखा साब गवाइया कर शां सुह मनाए वसे आ जिन इशा साब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुर विटों जेह दियां एवड़ियां कहे नानक सुनो संतो शब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पान शब्द कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंज दो तुद वास कीते काल कंटक मारिया तोर कर्म पाया तो जिन को से नाम हर के लागे
कहे नान ते सुकुवा तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे दूरो संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पै स्वर से पूरे गुरते जाणी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर आपर पूरे बिरमंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुदावनी महला पंजवा थाल वेतन वस्तु पइयो साध संदो विचारो अमृत नाम ठाकर का पेयो जिसका सब सदारो जे को खावे जे को पुंच तिसका हो उदारो ये वास्तई न जाई नेतन राखुर तारो तम संसार चरण लगतरी है सब नान ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाही मैनो जो कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पे होई तरस पिया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवे हरिया तरस पिया मेरा मत हो सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवे हरिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहि

पंडित पाड़ी बाट, कबीर काल करंता अबै कर, अब करता सुताल, पाछे कछु न होएगा जो सिर पर आवे काल।

सुभाए। सतगुर सागर गुण नामका, मैं तिस देखण का चाऊ हूं, तिस बिन घड़ी न जीवऊ, बिन देखे मर जाऊ। ज्यों मछली विण पानिए रहे न कितै उपाय, त्यों हर बिन संत न जीवई, बिन हर नामै मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी, क्यों गुर बिन जीवा माओ, मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहाओ।

सज्जन मेरा एक तू करता पुरख सुजान, सतगुर मीत मिलाया मैं सदा सदा तेरा तान। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मैं रहा समाए। राम नाम धन संचया साबत पूंजी रास, नानक दरगाह मन्या गुरपूरे शाबास। राग सूही अष्टपदिया महला पंजवा, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उर्ज रहे बिखिया कै संगा मने व्यापत, अनेक तरंगा मेरे मन अगामे गोचर। कात पाइये पूर्ण परमेश्वर रहाओ, मोह मगन मैं रहा व्यापे, आत तृष्णा कब हूं नहीं त्रापे। बसे क्रोध शरीर चंडारा, अज्ञान ना सूझे महा गुबारा।

संत सज्जना नाम जपो मन मित जियो रहाओ। देखै सुने ना जानई माया मोया अंध जियो। काची देहा मिनसनी कूड़ कमावै तंद जियो। नाम त्यावै से जिन चले गुरपूरे संबंध जियो। हुक्मे जग मैं आया चलन हुक्म संजोग जियो। हुक्मे परपंच पसरिया हुक्म करे रस भोग जियो। जिसनो करता विसरै तिसै विछोड़ा सोग जियो। आपनड़े प्रभ पाणिया दरगा पैदा जाए जियो। ऐथै सुख मुख उजला इको नाम ते आए जियो। आदर दिता पार ब्रह्म गुर सेविया सत पाए जियो। थान थनंतर रव रहिया सर्ब जिया प्रतपाल जियो। सच

चल कै मैं तकी तो शरणाए जियो मैं आसा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाए जियो त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा पाओ जियो इं पावे हर दृसा बड़ा ना लगे तत्ती वाओ जियो हों आपो बोल ना जानदा मैं कहया सब हुक्माओ जियो हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक किया पसाओ जियो मैं बौड़ ना त्रिशना पुखड़ी हों रजा त्रिपत गाए जियो जो गुर दिसै सिखड़ा तेवस नेम नेम लागू पाए जियो राग सूही शंत महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पर जोबन मैं मत पेयड़ै कर पौनी बलराम जियो मैली अवगुण चित बिन बिन गुर गुण ना समावनी बलराम जियो गुण सार न जानी परम पुलाणी जोबन बाद गवाया वर घर दर दर्शन नहीं जाता फिरका सहज न पाया सतगुर पूछ न मार्ग चाली सूती रहन विहानी जियो नानक बाल तन रांडेपा पेर बिन धन कुमलाणी जियो बाबा मैं वर दे मैं हर वर भावै तिसकी बलराम जियो रव रहिया जुग चार त्रिपवन बाणी जिसकी बलराम जियो त्रिपवन कंतर वै सुहागण अवगण वंती दूरे जैसी आसा तैसी मनसा पूर रहा पर पूरे हर की नार सुसर्ब सुहागण रांड न मैलै वेसे नानक मैं वर साचा भावै जुग जुग प्रीतम तैसे बाबा लगन गणाए हम्पी वंजा सहुरै बलराम जियो शाह हुकम रजाए सो ना टलै जो प्रभ करै बलराम जियो किरत पया करतै कर पाया मेट न सकै कोई जांजी नाऊ नरै ने केवल रव रहया ते लोई माए निराशी रोए विशुन्नी बाली बालै हेते नानक सात शब्द सुख महली गुर चरणी प्रभ चेते बाबुल दतड़ी दूर न आवै घर पेयै बलराम जियो रैसी वेख अधूर फिर रावी कर सुहियै बलराम जियो साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी प्रधाने संजोगी मेला थान सुहेला गुणवंती गुर ग्याने सत संतोख सदा सच पल्लै सच बोलै पिर पाए नानक विछड़ ना दुख पाए गुरमत अंक समाए राग सूही महला पहला शंत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम घर साजने आए साचै मेल मिलाए सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त हुई जे सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया घर मंदिर सोहाए पंच शब्द तुन अनहद वाजे हम घर साजने आए आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो तां प्रभ पावो सोहिलड़ा जुग चारे अपने घरे आया थान सुहाया कारज शब्द सवारे ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिपवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया मन तने अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतना अंतर रतन पदार्थ मेरा परम तत् विचारू जंत भेख तू सफल्यो दाता सिर सिर देवन हारो तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा गाम्य कार अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पे देवाने मन राख्या गुर ठाए नानक अवगुण शब्द जलाए
गुण संगम प्रपाय, राग सोही महला पहला घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद आवो।

मन जाओ कनेरा, सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा, दर्शन देख पई निह केवल, जन्म मरण दुख नासा, सगली जोत जाता तू सोई, मिलिया पाए सुपाए, नानक साजन को बल जाइए, साच मिले घर आए, घर आएड़े साजना ता तन खरी सरसी राम, हर मोहड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम, गुण संग रहंसी खरी सरसी, जा रावी रंग राते अवगुण मार, गुणी कर छाया पूरे पुरख विधाते, तश्कर मार वसी पंचायन अदल करे विचार, नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे, वर पाएड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम, फिर रावेड़ी शब्द रल रविया रव रहिया नह दूरी राम, प्रभ दूर न होई घट घट सोई तिसकी नार सबाई, आपे रसिया आपे रावे ज्यों तिस दी वड्याई, अमर अडोल अमोल अपारा गुरपुरै सच पाईऐ, नानका पे जोग सजोगी नदर करे लेव लाईऐ, फिर उचड़िय माडड़िय तेह लोआ सिर ताजा राम, हों बिसम पही देख गुणा अनहद शब्द अगाजा राम, शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो, नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवाणो, पत मत पूरी पूरा परवाना ना आवै ना जासी, नानक गुरमुख आप पछाणै प्रभ जैसे अविनाशी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही संत महला पहला, कर चौथा जिन किया तिन देखिया जग तंदड़ै लाया, दान तेरे घट चानना तन चंद दी पाया, चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया, गुण जान

जुग चारे साचाए को वरतै, बिन गुर किने ना पाया, नानक रंग रवै रंग राती, जिन हर छेती चित लाया, कामण मन सोहिलड़ा, साजन मिले प्यारे राम, गुरमती मन निर्मल हुआ, हर राख्या उर तारे राम, हर राख्या उर तारे अपना कार्ज सवारे गुरमती हर जाता, प्रीतम मोल आ मन मेरा पाया कर्म विधाता, सतगुर शिव सदा सुख पाया हर वसिया मन मुरारे, नानक मेल लई गुरे अपने गुर कै शब्द सवारे।

राम नाम प्यारे सब कुल उधारे राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया कर अनहद सुरत समाणी हर हर एको पाया हर प्रभ नानक कृपा तारे सोलड़ा हर राम नाम गुर शब्दी विचारे हर हर एको पाया हर प्रभ नानक कृपा तारे।

कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गवाए, निज कर पाया वसा, विवेक बुद्ध सुख रहण विहानी, गुरमत नाम प्रगाशा, हर हर आनंद पया दिन राती, नानक हर मीठ लगाए, गुरसेवन दाता गुरसेवन सत गुरदाता, हर हर नाम समाए, राग सूही महला चौथा, शंत कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सतगुर पुरख मिलाए,

जियो, बाणी गुर गाई, परमगत पाई, पंच मिले सुहाया, गया क्रोध ममता तन्नाठी, पाखंड परम गवाया, होमै पीर गई सुख पाया, आरोगत पय शरीरा, गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता, नानक गुणी गहीरा, मन मुख विछड़ी दूर महल ना पाए, बल गई बलराम जियो, अंतर ममता कर कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो, कूड़ कपट कमावै महा दुख पावै, विन सतगुर मग न पाया, उजड़ पंथ भ्रमै गवारी, खिन खिन धक्के खाया, आपे दया करे प्रभ दाता, सतगुर पुरख मिलाए, जन्म जन्म के विछड़े जन मेले, नानक सहज सुभाए, आया लगन।

जब साजन सुने कर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फिरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगाम अगोचर, साधन

जाई। हम पूछूं अपना सतगुरु दाता किन बिद दुतर तरिये राम। सतगुरु भाई चलो जीवत्या एव मरिये राम। जीवत्या मरिये पौ जल तरिये गुरमुख नाम समावै। पूरा पुरख पाया वडभागी सच नाम लिव लावै। मत प्रकाश।

पहला, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ वैष्णव, कूड़ सोईना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनना, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मिया, कूड़ बीबी, खप होए कार, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता, किस नल की जय दोस्ती, सब जग चलन हार, कूड़ मिठा, कूड़ माख्यो, कूड़ डोबैपुर, नानक वखाणा बेनती तुझ।

0: तन न जाए। धोती टिका तय जप मले तान मले शाखाए, अंतर पूजा पढ़क ते बासन जम तुरका पाए। छोड़ी ले पखंडा नाम लिए जाय तिरंगा महला पहला।
1: मानस खाने करे निवास, छुरी बगैन तिरंगल ताग, तिन कर ब्राह्मण पूरा।

बड़ो बड़ा बड़ मेदनी सिर से तंदे लाइंदा नदर पठी दे करे सुल्ताना काओ कराइंदा दर मंगण पिख न पाइंदा दर मंगण।

0: सब कोई सूत को कर रखी है, सूत पवे सोई, नानक सूत के बिना उतरे ज्ञान उतारे तो ही महला पहला।
1: मन का सूतक लोभ है जीवा सूत कूड़, अखी सूतक वेखना पर त्रिय परतन रूप, कन्नी सूत कन पे लाए तवारी खाए, नानक हंसा आदमी बदे जम पुर जाए महला पहला। सबो सूतक भरम है दूजा लगे जाए, जमण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए, खाना पीना पवित्र है दिता रिजक समाई।

सब किश तेरा तू अंतर जामी तू सबना का प्रभ सोई जिसनो दात करें सो पाए जन नानक अवर न कोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागी हो सतगुरां दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के रब्बी बाणी दे कीर्तन गुरु करके रागी जत्थे ने आप जी नूं सरवण कराए ने उपरंत अरदास ते हुकम आप जी ने सरवण कीता है। आओ समा है पावन गुरबाणी दी विचार दा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

सब दलद भंज दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाओ। हर का अंग्रहो हर आप सुबारियो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल। हर अपनी कृपा करी आप गृह आयो हम हर की गुर की ये है वसीठी हम हर देख पही निहाल निहाल निहाल निहाल, निहाल।

हर लाल, जन नानक हर हर मिले पए, गलतान हाल निहाल निहाल, नट महला चौथा, मन मिल सत संगत सुभवंती, सुन अकथ कथा सुखवंती, सब किल विक पाप लहंती, हर हो लिखत लिखंती रहाओ, हर कीरत कल युग विच उत्तमत गुरमत कथा भजंती, जिन जन सुनी मनी है जिन जन, तिस जन के हो करुणामंती, हर अकथ कथा का जिन रचख्या, तिस जन सब भूख लहंती, नानक जन हर कथा सुनो त्रिपति जप, हर हर हर हो वंती, नट महला चौथा, कोई आन सुनावे हर की हर गाल, तिस कौ हाउ बल बल बाल, सो हर जन है पाल पाल, हर हो मेल निहाल रहाओ, हर का मार्ग गुर संत बतायो, गुर चाल दिखाई हर चाल, अंतर कपटों चुकाब हो मेरे गुर सिख हो, निकटप कमावो हर की हर काल, निहाल निहाल निहाल, ते गुर के सिख मेरे हर प्रभाए, जिन्ना हर प्रभ जानो मेरा नाल, जन नानको मत हर प्रभ दीनी, हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल, राग नट नारायण महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम हो क्या जाना क्या पावै, मन प्यासो बहुत दरसावै रहाओ, सोई ज्ञानी सोई जन तेरा, जिस ऊपर रुच आवै कृपा करहो, जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुध ते आवै, कवन जोग कवन ज्ञान ध्याना, कवन गुनी रिझावै सोई जन, सोई निज भगता जिस ऊपर रंग लावै, साई मत साई बुद्ध सियानप, जित निमख ना प्रभ विसरावै, सत्संग लग इहो सुख पायो, हर गुण सद ही गावै, देखियो अचरज महामंगल रूप, किछ आन नहीं दिष्टावै, कहो नानक मोर चांगुर लाहेओ, तह गर्भ जोन कह आवै, नट नारायण महला पंजवा, दोप दे को अंकार सतगुर प्रसाद, उलाहनो मैं काहू न दियो, मन मीट तुहारो की ओं रहाओ, आज्ञा मान जान सुख पाया, सुन सुन नाम तुहारो जियो, इहा ओहा हर तुम ही इहो गुर ते मंत्र दड़ियो, जब ते जान पाई यह बाता, तब कुशल खेम सब थियो, साध संग नानक परगास्यो, आन ना ही रे बियो, नट मोहल्ला पंजवा, जाको पई तुम्हारी तीर, जम की त्रास मिटी सुख पाया, निकसी हो मैं पीर रहाओ, तपत बुझानी अमृत बानी त्रिपति जो बारक खीर, मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई बीर, खुले परम पीत मिले गोपाला, हीरे विदे हीर बिसम भय नानक, जस गाव तुम ठाकुर गुनी गहीर, नट महला पंजवा, अपना जन आपे आप उधारियो, आठ पहर जन के संग वस्यो, मन ते नाही विसारियो रहाओ, बरण चिहन नाही किछ पेखियो, दास का कुल ना बिचारियो, कर कृपा नाम हर दियो, सहज सुभाए सुवारियो, महा बिखम अग्न का सागर, तिस्ते पारे उतारियो, पे पेक नानक बिकसानो, पुनहो पुनहो बलिहारियो, नट महला पंजवा, हर हर मन मह नाम कहो, कोट अपराध मिटै खिन भीतर ताका दुख ना, रहो रहाओ खोजत खोजत भयो, वैरागी साधु संग लहो,
सगल त्याग एक लिव लागी, हर हर चरण गह ओं कहत मुक्त सुनते निस्तारी, जो जो शरण पयो। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, कहो नानक आनंद पयो। नट महला पंजवा चरण कमल संग लागी, डोरी सुख सागर कर परम गत मोरी। रहाओ अंचलांग हायो, जने अपने को मन भी दो प्रेम की खोरी। जस गाव तुम भगत रस उपजो, माया की जाली तोरी। पूरन पूर है कृपा निधान, न पेखो होरी। नानक मेल लियो दास अपना, प्रीत न कबहू थोरी। नट मोहला पंजवा मेरे मन जाप, जप हर नारायण कबहू ना बिसरहो। मन मेरे ते आठ पैर गुण गायन, रहाओ साधु तूर करो नित मंजन। सब किलबिक पाप गवायण, पूरन पूर है कृपा निध। घट घट दिष्ट सुमैण।

मन तन चीत रहाओ। कोई बिरलाया पुन कीत संग चरण कमल मन सीत कर कृपा हर जसुदीत हर भज जन्म पदार्थ जीत कोट पतत हो पनीत नानक दास बल बल कीत। नट अष्टपदियां महला चौथा एको ओंकार सतगुर प्रसाद।

हर हर हर हर हर मन त्याव हो मैं हर हर नाम प्यारे दीन दयाल पै प्रभ ठाकर गुर कै शब्द सवारी मधुसूदन जग जीवन माधो मेरे ठाकर अगम अपारे एक विनो बेनती करो गुर आगै मैं साधु चरण पखारे सहस नेत्र नेत्र है प्रभ कोम प्रभ एको पुरख नरारे सहस मूरत एको प्रभ ठाकर प्रभ एको गुरमत तारी गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उर तारे हर हर कथा बनी अत मीठी जो गुंगा गाटक सुमहारे रस ना साधु चखे पाए दूजे अत फीके लोभ विकारे जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अन रस साध बिसारी गुरमत राम नाम तनु पाया सुन कहते आ पाप नवारे धर्म राय जम नेड़ न आवै मेरे ठाकुर की जन प्यारी सा सा संसा सहजेते मैं गुरमत नाम सुमारे सा सास जाए न मैं बिन सो बिरथा सास भिकारी कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरणी मोह को हर जन मिल प्यारे नानक दासन दास कहत है हम दासन के पनहारे नाट महला चौथा राम हम पाथर नगुर निर्गुनी आरे कृपा कृपांकर गुरु मिलाए हम पाहन शब्द गुर तारे रहाओ सतगुर नाम दृढ़ाए अत मीठा मैं लांगर मलगारी नाम सुरत बजी है दे दिस हर मुस्की मुस्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन सुमारी गावतों हर गुण गाए गुण गावतों गुर निस्तारी भी कहूं गुरु गुरु समदर्शी तिस मिली है संक उतारी सतगुर मिली है परम पद पाया हो सतगुर के बलहारी पखंड पखंड कर कर भर में लोभ पखंड जग बुरियारी हालत पालत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सिर मारी उगवै दिन सयाल जाल सुमल बिख माया के विसथारे आई रैन पया सुपनंतर बिख सुपने पी दुख सारे कलर खेत लैं कूड़ जमाया सब कूड़ें के खलवारे साकत नर सब भूख पखाने दार ठांडे जम जंदारे मन मुखं कर्ज चढ़िया बिखपारी उतरै शब्द विचारे जितने कर्ज कर्ज की मंगी आए कर सेवकों पग लगूं बारे जगनाथ सब जंतरिया पाए नक खीनी सब नथहारे नानक प्रभ खिंचे तिव चलिया जो पावे राम प्यारे नट महला चौथा राम हर अमृत सर नवारे सतगुर ज्ञान मंजन है नीको मिल काल मालो पाप उतारे रहाओ संगत का गुण बहुत अधिकाई पढ़ सुआ गन क्योदारी पर सुन पर सुन पय कुप विजां को लैकुंठ सदारे अजा मल प्रीत पुत्र प्रत की नी का नरैन बोलारे

रस गावै रस बिचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे, मेरे लालन लाल गुलारे। जैसा रंग देहे सो होवै, क्या नानक जंत बिचारे। नट महला चौथा। राम गुरु सरनो प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तदु ऐं पकर चलायो। कर ऊपर कढ़ निस्तारे रहाओ, प्रभु के सेवक बहुत अतनीके। मन सरदांकार हर तारे, मेरे प्रभु सरदा भगत मन भावे। जन की पै सुवारे, हर हर सेवक सेवा लागै। सब देखै ब्रह्म पुसारे, एक पुरख एक नदरी आवै। सब एका नदर निहारे, हर प्रभु ठाकर रविया। सब ठाई सब चेरी जगत सुमारे, आप दयाल दया दान देवै। बिच पाथर कीरे कारे, अंतरवास बहुत मुस्काई। भ्रम भूला मिर्ग सिंहारे, बन बन ढूंढ ढूंढ फिर ताकी। गुरपुरै घर निस्तारे, बाणी गुरु गुरु है बाणी। बिच बाणी अमृत सारे, गुर वाणी कै सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे, सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया। मन बीजिया खुवारे, ज्यो जन चंद्रहांस दुखिया। त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लुकी जारे, प्रभ को जन अंतर हृदय लोचै। प्रभ जन के सास निहारे, कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए। जन पीछे जग निस्तारे, अपने आप प्रभ ठाकर। प्रभ आपे सृष्ट सुवारे, जन नानक आपे आप। सब वरतै कृपा आप निस्तारी। नट महला चौथा। राम कर कृपा लेहो अवारे, ज्यों पकर द्रौपदी दुष्टा आनी। हर हर लाज निवारे रहाओ, कर कृपा जाचक जन तेरे। एक मांगो दान प्यारे, सतगुर की नित श्रद्धा लागी। मोको हर गुर मेल सुवारे, साकत कर्म पानी ज्यों मतिया। नित पानी झोल चुलारे, मिल सत संगत परम पद पाया। कड माखन के गटकारे, नित नित काया मंजन किया। नित मल मल दे सुवारे, मेरे सतगुर के मन बचन न पाए। सा फोकट चार सिंगारे, मटक मटक चल सखी सहेली। मेरे ठाकर के गुण सारे, गुरमुख सेवा मेरे प्रभाई। मैं सतगुर लख लखारे, नारी पुरख पुरख सब नारी। सब एको पुरख मोरारे, संत जना की रेन मन पाई। मिल हर जन हर निस्तारे, ग्राम ग्राम नगर सब फिरे। आरिद अंतर हर जन पारे, सरदा सरदा वो पाए। मिलाए मोको हरि गुर गुर निस्तारे, पवन सूत सब निका करया। सतगुर शब्द विचारे, निज कर जाए अमृत रस पिया। बिन न जगत निहारे, ताओ गुण ईश वर्ण।

चौथा मेरे मानो भज ठाकर अगमी अपारे, हम पापी बहो निर्गुणी आरी, कर कृपा गुर निस्तारे रहाओ। साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम धन पूजी देवो सब तिसना भूख निवारे। पचे पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एको इंद्री पकर सिंघारे, पंच भूत सब लहै देही गुर, सत गुर पाप नवारे। शस्त्र भेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, रामो नाम पढ़ो गत पावो, सत्संगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे, मेरो सुमेरो मोर बहु नाचै, जब उन वै कन कन हारे, सकत को अमृत बहो सिंच हो, सब डाल फूल विस्कारी। ज्यों ज्यों निवह साकत नरसेती, छेड़ छेड़ कड्डे विकारी, संतन संत साध मिल रही है, गुण बोल है परोपकारी। संतै संत मिलै मन बिकसै, ज्यों जालो मिल कमल सवारे, लोभ लहर सब स्वान हल्क है, हल्क्यो सब है बेगारी।

जाली रहन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेती रस रस चोग चुग है नित फस छूट समूढ़े कवन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अग्न तित लाग रही कोयल पापूं पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत पई पया मनूर कंचन फिर हो बै जे गुर मिलै तनेहा एक नाम अमृत ओह दे बै तो नानक दृष्टत देहा मारू मोहला पहला।

नहीं रहे। दादर तू कबह न जानस रे पख सुंस बाल वस स निर्मल जल अमृत ना लख सुरे रहाओ। वस जल नित ना वस्त अयले मेर चचा गुन रे चंद कमुंदनी दूर हो निवसह अनभव कारण रे अमृत खंड दूध मद संच संतु वन चतर के रे। अपना आप तू कबहू न छोड़स पिसन प्रीत ज्यो रे पंडित संग वसै जन मूर्ख आगम सांस सुने। अपना आप तू कबहू न छोड़स सुआन पूछ ज्यो रे।

का पतत पनीत असंख होए हार चरणी मन लागे आठ सठ तीर्थ नाम प्रभ नानक जैसो मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सहकी एक बात सुहेली जो मैं बेदन सा किस आखा माई हर बिन जियो न रहे कैसे राखा माई रहाओ हाओ दुहागण खरी नियाणी गया सो जोबन धन पछताणी तू दाना साहब सिर मेरा खे जमत करी जन बंदा तेरा भनत नानक अंदेसा ही बिन दर्शन कैसे रबो सनेही मारू महला पहला मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाउ सुभागा गुर की बचनी हाट बेकाना जित लाया तित लागा तेरे लाले क्या चतुराई साहब का हुक्म न करना जाई रहाओ

0: ओंकार सतगुरु प्रसाद। जय वैसल
1: लेता वैसा स्वामी जय है भेजता जावा सब नगरी मह एको राजा सबे पवैत है थावा बाबा देह वसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहाओ बुरा भला किच आपस ते जानिया ए सगल विकारा इहो फरमाया खसम का हुआ वरते इहो संसारा इंद्री धात सबल कहियत है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझै कोई गुरप्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बिनासी जो तिस पाणा सो सत करमान्या काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मंगै कवना जा चुका मन मन मेहमान अभिमाना तास तास धर्म राय जपत है पए सच्चे की सरणा मारू महला तीजा आवन जाना ना थी है निज घर वासा होए सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए ए मन हर जियो चेत तू मन हो तज विकार गुर कै शब्द ते आए तू सच लगी प्यार रहाओ एथे ना वह भुलिया फिर हथ कथाऊ ना पाए जो नी सब पवाई एन बेष्टा माए समाए मड़भागी गुर पाया पूर्ब लिखिया माए आंदन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए आपे श्रेष्ठ सब साजी एन आपे नदर करे नानक नाम वडे आईया जय पावै तै दे मारू महला तीजा पिछले गुनह बख्साए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरणी लाग रहा विचहो आप गवाए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याय सदा।

तरे रहाओ। कलयुग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे नामा जय देव कबीर तरलोचन सब दोख गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किल विख पाप टरे। जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे। बेसुआ रवत अजामल उदरियो मकबूले नारायण नर हरे। नाम जपत उग्र सैन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे।

बनवाली, हर हृदय सदा सदा संभाली, हर हर नाम जपो मेरे जियड़े, हा जप हर हर नाम छडावे जियो राहो, सुख सागर अमृत।

जियो। तू सर्वतर तेरा सब कोई, जो तू करहे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जप हो मन मेरे। सब किल विख काटे हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो। हर चलदिया नाल सिखाई जियो, जिसनों कृपा करे सो त्यावे। नित हर जप जापे, जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस आवे, जप हर हर पर लंगाई जियो। राव

सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खेलाया था गुर सेवे। कहो नानक परम गुर खोया ता, हर महली महल पाया था। मारू महला पंजवा, जिसहे साज निवाजिया तिसहे स्यों रचनाहे। आन रूती आन बोईऐ फल न फूलै ताहे। रे मन वर्तन बीजन नाओ बोए, खेती लाए मनुआ भलो समाओ समा स्वाओ रहाओ।

पाप मुक्त मोको प्रभ मिले ऐसो कहाँ लहा रहाओ। तपसी कर कै देहि सदी मनुआ देह दिस न तना पर ब्रह्म ब्रह्म चज कीना हृदय प्या गुमना सन्यासी होए कै तीर्थ परमेओ उस मह क्रोध बिगन्ना।

रहता रहत है निर्मल हर के संता तिनकी तूड़ पाए मन मेरा जा दया करे भगवंता कहो नानक गुरपुरा मिलया ता उतरी मन की चिंता मेरा सम अंतर जामी हर राया।

आधारा रहाउ सर्व धारण प्रतपारण बिन एक बिनो दीना तुमरी बैद तुम ही जाना हो तुम जल हमीना पूरन बस्तीरन स्वामी आहे आहे आयो पाच सगलो भूमंडल खंडल प्रभ तुम ही आछ

जन्म सरागयो राम, अब कह पछतायो राम, भजन नहीं लाग्यो रहाओ। जम को डंड परयो सर ऊपर, तब सोबत तै जाग्यो कहाँ होत। अब मैं अब कह पछताए, छूटत नाहन पा भाग्यो। नह चिंता उपजी घट मैं, जब गुर चरणन अनरागयो। सफल जन्म नानक तब हुआ, ज्यों प्रभ जस मह पाग्यो। मारू अष्टपदियां महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका, अठ सठ तीर्थ बहु घना भ्रम ताके पेखा।